चे महा आमो सुटा ना नोश के स्था आशो नि पैस्था आशो न्यूस्ते आशो आमो सुटा ना प्यो आश का पत नहीं मैं।